0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार।
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं। चार पांच दिन में?
2: चार या
1: पांच। पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: इफ यू एवर सेट अ रिंगटोन टू क्या मुझे प्यार है, यू आर इन द राइट प्लेस। दिस इज द बिग मिलेनियल वीकेंडर, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं। चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग। Big 106.2, the

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is the Big Binge only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

जो भाई बहन का डायनामिक है इस फिल्म में, इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग्स अबाउट द एंटायर फिल्म. मैक्स वाइल्डली प्रोटेक्टिव है, हॉट हेडेड है, ही इज टेरिटोरियल. बेसिकली वो शर्ली के पर्सनल गोवा बाउंसर की तरह बिहेव करता है. लेकिन वॉट मेक्स इट वर्क इज दैट ऐश्वर्या doesn't play a very helpless little sister. पता है ना आपको सारे जो memes हैं of दुखियारी बहन in Bollywood, इससे पहले all that was very very true. लेकिन after Josh, you know, sisters also started getting a bit of Josh in Bollywood. Shirley has a mind of her own romance, and spends half the film trying to manage उसके भाई का यानी कि शाहरुख खान का temper. Casting itself is fun because शाहरुख खान Aishwarya, they should have been playing lovers but they are playing brother sister. तो काफी courageous decision रहा होगा at that point, and that is why इस relationship को एक बहुत ही अलग सी energy भी मिलती है. It's loud, it's dramatic, slightly ridiculous as well, very 2000s Bollywood, doesn't age very well. लेकिन underneath all that gang rivalry, Max genuinely Shirley को protect करना चाहता है यार. So that's at number 4 में Josh, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय. What's at number 3 coming up in just a while? The top 4 Bollywood bhai-behen jodis right here on The Big Binge with me, Sid.

0: This is the Big Binge with me, Sid, and we're doing the Bollywood ke top 4, according to me, best bhai behen jodis on screen, real life, not a real life. We are at number 3. At number 3, according to me, there is this film. Dil Dhadakne Do is at number 3. और मेरे लिए ना फॉर मी कबीर एंड आयशा प्लेड बाय रणवीर सिंह प्रियंका चोपड़ा ये बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल मॉडर्न ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप्स हैं यार कोई मेलोड्रामा नहीं है कि मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट स्पीच एवरी 10 मिनट्स इंस्टेड एक जो भाई बहन के बीच में एक अनसेड सी एक होती है ना केमिस्ट्री मतलब दे डोंट से टू मच बट दे नो ईच अदर राइट इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट कबीर सिंपली सीज आयशा वो अंडरस्टैंड करता है दैट शी इज मिजरेबल इन हर मैरिज हर रिलेशनशिप उसको पता है दैट द पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली अंडर वैल्यूइंग हर और जब फैमिली फाइनली एक्सपेक्ट करती है कि वो सैक्रिफाइस करे ही इज द वन पर्सन कभी इज द वन पर्सन जो कंसिस्टेंटली अपनी बहन को बैक करता है एंड दैट्स वॉट एक्चुअली मेक्स दिस रिलेशनशिप फील सो रियल एंड जोया अख्तर ने कहा भी that she was not interested in developing relationships that are filmy but she wanted dynamics that felt recognizable so the lovely thing about kabir is ki wo chota hai umar mein he is younger less accomplished less responsible lekin emotionally he is often the only person in the family jo ki apni behan ko ek adult ki tarah treat karta hai yaar so it's quite amazing that's at number 3 अगर दिल धड़कने तो नंबर 3 पर है तो नंबर 2 नंबर 1 पे कौन सी फिल्में हैं कौन सी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप्स हैं कमिंग राइट अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड
1: हे गर्ल
2: हे बॉय
1: वुड यू बी माय बेबी डॉल
2: श्योर इफ यू

0: हुए।
1: मैंने ना फैसला किया है।
2: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
1: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
3: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

This is the Big Binge with me, Sage, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And आज हम लोग कर रहे हैं the best, the top four भाई बहन, brother sister relationships on screen, real life. भाई बहन जोड़ियां कौन सी हैं? हम लोग number two पर पहुंच गए हैं. And number two पे है ये वाली फिल्म. फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा. Probably it gave Bollywood its definitive brother sister song. ऐसा कोई राखी का त्योहार ही नहीं है जहां पर बैकग्राउंड में ये गाना ना बज रहा हो. On the most iconic रक्षाबंधन बैकग्राउंड म्यूजिक इन इंडिया. बट इन साइड द फिल्म एक्चुअली द स्टोरी इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग. देवानंद प्लेज प्रशांत, क्रोसांत नहीं, प्रशांत. ही सर्चिंग फॉर हिज यंगर सिस्टर जसबीर, जो कि जैनिस बन गई है आफ्टर बींग सेपरेटेड फ्रॉम हर फैमिली एंड फॉलिंग इन टू द हिप्पी कल्चर ऑफ कठमंडू. वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस, राइट? सो दिस इज इंट सिंपली अ प्रोटेक्टिव ब्रदर स्टोरी. इट्स अबाउट अ ब्रदर जो कि डेस्परेटली अपनी बहन को खोज रहा है. इज वॉन्टिंग टू रिकवर द सिस्टर ही रिमेंबर्स वाइल स्लोली रियलाइजिंग कि यार वो तो कोई और बन चुकी है. शी हैज बिकम कंप्लीटली समबडी डिफरेंट. एंड ज़ीना तमान वाज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन इट. एंड इफेक्टिवली दिस फिल्म ट्रांसफॉर्म्ड ज़ीना तमान्स करियर एंड मेड वन ऑफ हिंदी सिनेमाज बिगेस्ट स्टार्स. सो फूलों का तारों का सबका कहना है. बड़ा साउंड स्वीट करता है एट फैमिली फंक्शंस, लेकिन इन द मूवी इट कैरीज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लॉस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिवर्स जिगरा. सो दैट्स एट नंबर टू. कमिंग अप ऑन द बिग बिंज, विच इज माई फेवरेट बॉलीवुड ब्रदर सिस्टर ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड, ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood. It's now time to reveal my favorite Bollywood bhai behen ki jodi in belated celebration of Raksha Bandhan. And the award, the crown goes to Aditi and Amit in this film. Yeah, it's not a very usual choice. Janelia D'Souza and Prateek Babbar at their absolute best. Prateek Urf Amit is moody, introverted, hai, artistic, hai, permanently irritated, hai, or he spends most of the film actually behaving like he rather communicate with everyone through slam doors. Ye chuhon se baat karne mein zyada interested hai as compared to insaan. Lekin underneath all of that teenage hostility, wo Aditi ko, apni behen ko, bahut achhi tarike se samajhta hai. And the best things about their relationship is, kyunki sentipana nahi hai yaar. Ye sentimental log ek dusre se बात नहीं करते, बहुत नॉर्मल बातें करते हैं. नॉर्मली भाई बहन लड़ते हैं, ये लड़ते हैं. नॉर्मली भाई बहन एक दूसरे को इरिटेट अनॉय करते हैं, ये भी करते हैं. दे बेली से व्हाट दे फील एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन जब अदिति इज एक्चुअली हर्टिंग, देन हु नोटिसेस? हर ब्रदर अमित नोटिसेस. प्रतीक बब्बर का बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, लेकिन ये जो भाई बहन की रिलेशनशिप है, एक्चुअली फील्स कंप्लीटली लिव्ड इन, वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, वेरी रियल. एंड फॉर मी दैट्स व्हाई इट विंस, बिकॉज जो असली रियल लाइफ भाई बहन होते हैं, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूंगा. वो हमेशा कहेंगे मेरे रूम से बाहर निकल जाए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट. दैट्स माई नंबर वन. जाने तू या जाने ना, डू यू अग्री विद मी? यू डोंट हैव टू or not. You can leave a message on our Insta via 106.2 Big FM. Belated hi sahi, aap sabko Raksha Bandhan ki bahut bahut shubhkamnaye from all of us at Big 106.2. This is the Big Binge with me, Sid.

और इसके साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय ऑन द बिग बिंज. आज का शो आपको कैसा लगा? यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, लीव अ कमेंट ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. वी डिड अ टॉप 4 ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड के भाई बहन जोड़ीज, व्हिच इज नॉट ऑफ स्क्रीन, नॉट साकिब सलीम हुमा कुरैशी, बट ऑन स्क्रीन रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ. टॉप 4 के बारे में बात की आज. सो बुकेस ब्रिक बैट्स मोर देन वेलकम. एक बार फिर हमारा इंस्टा हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. आई एम सिट सेट SIDSETH साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो एंड आई एम गोना सी यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग. बैक टू स्कूल, बैक टू द बिग ब्रेकफास्ट 7 to 11. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन. टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.

0: ऑन नंबर 35 फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, रिक्रिएटेड गाना, ओरिजिनल गाना गुलाम का है। Right here on Big 106.2, मैं हूँ मानसी विद द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट बैंगर्स ऑफ द वीक। मूविंग ऑन टू गाना नंबर 34, स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन सोशल्स, एंड द शो इज स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 1 एवरी सिंगल प्लेस दैट आई हैव सर्च्ड एंड रिसर्च्ड। मुसाफिर कैफे की मैं बात कर रही हूँ। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था 5th अगस्त को कि सीजन 2 आने वाला है। फैंस लाइक मी गॉट वेरी वेरी एक्साइटेड, बट अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट आई नहीं है बिकॉज रिन्यूअल हैपेंड सो क्विकली आफ्टर द प्रीमियर। प्रोडक्शन अर्ली स्टेजेस में है, तो अगर हम रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें तो सीजन 2 2027 के एंड में ही आएगा। सो दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग वेट। द शो इज अडैप्टेड फ्रॉम दिव्या प्रकाश दुबे'स बेस्ट सेलिंग हिंदी नॉवल। द फर्स्ट सीजन लेफ्ट व्यूअर्स ऑन एन इंटेंसली इमोशनल क्लिफ हैंगर, एंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं सीजन 2 के बारे में। क्या अल्टीमेट चॉइस होगी, क्या चंदर सुधा के साथ जाएगा या फिर प्रीति के साथ। द एपिसोड्स विल एक्सप्लोर वेदर सुधा चंदर कैन रिकनसाइल द पास्ट और इफ टाइमिंग विल टेयर देम अपार्ट। सो आई कांट वेट फॉर सीजन 2, बट आई लव द म्यूजिक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोर म्यूजिक सीजन 2 में मुसाफिर कैफे से। फिलहाल इस हफ्ते ऑन नंबर 34 Honestly, मेरी थ्योरी अगर आप पूछो ना, प्रीति शुड फॉल आउट ऑफ लव, शी शुड नॉट बी विद चंदर। आई नो अ लॉट ऑफ यू वोंट अग्री, बट आई रियली फील के प्रीति इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड इन दिस शो। What is your theory? Do let me know. You can get in touch with me on Instagram. 106.2 Big FM it is. इसी के साथ on number 33, a beautiful one, Satinder Sartaaj and Jasmine Sandless.
1: सानू सारियां वे सर गईयां रामा वे केड़े पासे जाइए।
0: Coming up, playing you the top 40 biggest hits of the week. Stay right here, मैं हूं मानसी with the Big Bollywood Countdown.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany, only on Big 106.2.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

0: my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Playing in the top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Moving on to gana number 26 from Cocktail 2. Bahut hi romantic gana hai. Shahid Kapoor ka favorite gana hai. And when you watch the movie, I don't want to give you any spoilers. You'll understand why this is Shahid's favorite song from the album Cocktail 2. This week, we've got Arijit Singh ki awaaz.
3: Zamane mein kahi meri tarah kabhi.
2: साथ में सुनिधि चौहान, प्रीतम दा का म्यूजिक, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन कॉकटेल टू से. इसी के साथ ऑन नंबर 25, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट रेकमेंड यू दिस मूवी इनफ. नसीर साहब, ओ गॉड, ही इज अ लेजेंड एंड वी सो ब्लेस्ड, सो लकी दैट वी गेट टू सी हिम ऑन स्क्रीन डू व्हाट ही डज. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा, कमाल मूवी है, बहुत ही अच्छी कहानी है. एंड ऑफ कोर्स द मूवी हैज अ रोमांटिक एंगल, बट इट आल्सो शोज द पेन ऑफ द पार्टिशन दैट हैपेंड इन 1947. सो इफ यू हैवंट सीन द मूवी, प्लीज वॉच एंड डू कैरी अ लॉट ऑफ टिश्यूज.

0: के साथ ऑन नंबर 22। मैंने कहा ही था कि मिलेनियल्स की सैयारा है ये मूवी। आवारापन 2 हैज ऑफिशियली क्रॉस द 200 करोड़ ग्रॉस माइलस्टोन वर्ल्ड वाइड, एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज इमरान हाशमीज बिगेस्ट सोलो हिट एंड द फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ 2026। एंड इस हफ्ते आवारापन 2 से ऑन नंबर 22। मिलेनियल्स का रिश्ता ना बहुत पुराना, इमरान हाशमी से ये जेन जी समझ ही नहीं पाएंगे। एंड एवरी टाइम ही कम्स ऑन स्क्रीन हमें वो दौर याद आ जाता है जब हम इमरान हाशमी के गाने मूवीज घर वालों से छुप छुप के देखा करते थे। फिलहाल दिस वीक फ्रॉम आवारापन 2 ऑन नंबर 22।
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

you the top 40 biggest hits of the week. That was Gana Number Ek Kiss. Right here on Big 106.2, the beat of Bollywood, keeping you company. Main hoon Mansi, and of course, Gana Number Ek Kiss from the most anticipated movie of 2026, Toxic, a fairy tale for grown-ups. Release hui is hafte on the 26th of August. Marks the return of superstar Yash in a powerful double role as Raya. There is Nayanthara, Kiara Advani, Huma Qureshi, Tara Sutaria, and कहा जा रहा था ये movie इस साल की सबसे बड़ी movie होगी. Sensational opening मिली है Toxic को. The film exploded on the very first day, registering a historic 101 crore opening in India and a 140 crore global haul. एडवांस बुकिंग में ही इन्होंने 30 करोड़ प्लस जो है वो कमा लिया था. एंड ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. द हाई ऑरा हीरो मोमेंट्स, द मासेस आर लविंग यश. द मूवी फुली क्लियर्ड विद ए रेटिंग एंड इट रन्स फॉर 3 hours 14 minutes. आई थिंक द मूवी माइट ब्रेक धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स. मूविंग ऑन टू नंबर 20, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम मैं वापस आऊंगा.

वेदांग रैना की आवाज, इनफैक्ट जितने कमाल एक्टर हैं वेदांग उतने ही कमाल सिंगर भी हैं। इस हफ्ते ऑन नंबर 20, ऑन 19 वी हैव गॉट अनदर ब्यूटीफुल वन फ्रॉम मुसाफिर कैफे।

0: गांधी, प्रियांश श्रीवास्तव की आवाज दिस वीक ऑन नंबर 19.
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, ऑल द म्यूजिक आई लव, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 20.

On number 17, Guru Randhawa ki awaaz mein from Dhamal 4, playing you the top 40 biggest hits of the week. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, मैं हूं मैंसी। मूविंग ऑन टू गाना नंबर 16, आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दोस्त से। आयुष्मान खुराना हैज अ वेरी बिग रिलीज इन 2026, रिलीजिंग इन नवंबर ये प्रेम मूलिया, हाईली एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय सूरज बरजातिया, द मैन हु गेव अस विवाह, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। द फिल्म फीचर्स आयुष्मान स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ बरजातियाज आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम, साथ में को स्टार है शर्वरी वाघ, सो कांट वेट आयुष्मान टू प्ले प्रेम। फिलहाल काफी प्रेम मिला है उन्हें पति पत्नी और वो दो के लिए इस हफ्ते। On number 16.

0: my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Playing in the top 40 biggest hits of the week. ये है Big Bollywood Countdown. Top 12 की बारी आ चुकी है. इस हफ्ते भी चिपका हुआ है नंबर 12 पे. From Cocktail 2, Bandhu 2.0, a chart-busting, highly debated track from Cocktail 2. Debatable इसलिए क्योंकि iconic गाने को recreate किया था. But instead of completely changing the sonic foundation, the 2.0 variant preserves the nostalgic core of the OG गाना by locking down the exact same musical powerhouse. Pritam, Irshad Kamil, Kavita Seth and Neeraj Sridhar. Internet, of course, was not very happy, but the stars were very self-aware और उन्होंने काफी self-aware promotion की थी. पहले कह दिया था हम बहुत troll होने वाले हैं because हम इस iconic गाने को recreate करने की कोशिश कर रहे हैं. But I totally love this and I think recreated गानों की वजह से ही हमारे जमाने के गाने वापस आ रहे हैं. आई थिंक वी आर ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलेनियल्स इन दैट एज, कि अब हमारा जमाना वो वाला हो चुका है. इस हफ्ते ऑन नंबर 12. On number 11, a beautiful one again from Pati Patni aur Vodo, Tanish Bagchi creating magic.

0: इसी के साथ मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पे पहले ही दिन तबाही मचा दी, द मोस्ट सेंसेशनल ओपनिंग एवर फ्रॉम टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। इस हफ्ते ऑन नंबर 5, द मूवी मार्क्स द हाईली एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑफ द कन्नड़ सुपरस्टार यश आफ्टर 4 इयर्स। एंड गीतू मोहनदास ने ये मूवी बनाई है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म्स एवर प्रोड्यूस्ड, बट आई थिंक द मूवी इज शैटरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो।
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, ऑल द म्यूजिक आई लव, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

0: That's it.
1: Definitely karta.
2: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रिकमेंड्स एंड बात करने वाले हैं दुबई की यूएई की ट्रेंडिंग वायरल डिशेस के बारे में.
4: तेनू लेके मैं जावांगा.
3: कहां कहां जाना चाहते हो? दिल तो दे दिया भाई मैंने अपने खाने को. फूडी इतनी बड़ी हूं मैं. अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है वायरल ट्रेंडिंग फूड की, ऑल यू हैव टू डू इज मैसेज मी 0543091062 पर, या फिर आप मुझे ना सिंपली रील भेज दिया करो यार 106.2 बिग एफएम के पेज पर, लिख कर साथ में बिग रिकमेंड्स फॉर अवनी. वेल, अब बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पर है, कौन कौन सी डिशेस मैंने ट्राई करी है एंड विच आई वांट टू रिकमेंड टू यू. अ लॉट कमिंग इन अ बिट. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: Well, this is for all the moms, यार, जो कहती हैं यार कि junk food है, मैदा है, नहीं यार, मैं इसको घर पे healthy version में बना देती हूँ. Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ. This is the big recommends, जहाँ पर मैं recommend करने वाली हूँ एक ऐसी dish, एक ऐसी चीज जो viral है और एक substitute है इस junk food को. Burger की मैं बात कर रही हूँ. क्या substitute निकला है? All I have to say is कि भाई जो moms है ना घर की, वो तो कहती हैं इसको देखकर
1: एक नजर में भी प्यार होता है.
0: उनको प्यार हो गया है क्योंकि उनके किचन में ये स्पेसिफाइड सब्स्टिट्यूट बनता है. वेल, व्हाट इज इट? ट्राई तो मैंने किया था, एंड ऑल आई हैव टू से इज इट डज फील लाइक मैजिक. यार जंग तो लग नहीं रहा है, इसको मैं फ्रैंकी रैप बोलूं कि क्या बर्गर बोलूं, क्या बोलूं, व्हाट इज इट? बताती मैं आपको. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

Well, that's what mom say to this viral paratha smash burger. Ki bhaiya, hamare bachchon ke plate se mat jao. Big 106.2 पर this is Avni and Big recommends चल रहा है and this time मैं recommend करने वाली हूँ this viral paratha smash burger. नाम से पहचान चुके होंगे, burger में bun की जगह there is this मोटा paratha. Of course वो smash होता है, layers होती हैं तो एकदम पराठे वाली feel आती है और उसको अंदर से काट के filling जो है सारी की सारी burger वाली ही डाली जाती है. But अगर आप एक bite taste करते हो, oh my god, it's yum. I'm telling you, it's 10/10. लेकिन it feels like कि आप Frankie या फिर wrap खा रहे हो. और अगर थोड़ा सा और क्रंची होता मैं तो उसको टाको भी बोल देती. अगर आपने ट्राई किया है वायल पराठा स्मैश बर्गर, डू लेट मी नो 0543091062 पर. नहीं किया है तो जाके कर लो. स्पेशली मम्मी है यार, अपने बच्चों को जरूर जाके खिलाओ कि यार जंक नहीं खाएंगे, आज हम मैदा नहीं खाएंगे. उनका बस हमेशा बहाना यही होता है यार, मैदे से पता नहीं क्या दिक्कत है, होनी भी चाहिए, मतलब ठीक है, अनहेल्दी. सब्स्टिट्यूट पराठा स्मैश बर्गर इट इज. बताती हूँ नेक्स्ट आवर में कि एक और चीज वायरल हो रही है, ये खानी बनती है कि नहीं. बिग रिकमेंड्स इट इज विद अवनी. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 में हूँ अपनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको मिर्ची बहुत पसंद होती है, दे लव स्पाइसी फूड। फिर वो आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं भैया बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही है मुझे, आप गोलगप्पे में और स्पाइस डाल सकते हो।
3: कहो ना कहो ये आके
2: आप बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन अगर आपको स्पाइसी फूड नहीं पसंद है, देयर इज अ सैंडविच गोइंग वायरल जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, वायरल जापानीज सैंडविच। व्हाट इज इट बताती हूँ मैं, इन द सावर। टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग रेकमेंड्स ओनली ऑन बिग 106.2।

who's that lucky person, by the way, जिनको ये सैंडविच मिलेगा, इसमें स्पाइस नहीं है. Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी and this is the big recommends. And आज की recommendation पर मेरे पास list में number है this sandwich which is not spicy at all. Actually वो savory भी नहीं है. हाँ option मिल जाएगा अगर आपको चाहिए चाहिए. But this is the viral Japanese sandwich जो बनता है cream से. A lot of flavors सबसे पहले TikTok पर famous हुआ था and then वहाँ से आते आते reels पर famous हुआ. Of course Japan का है तो वहीं से trend शुरू हुआ. लेकिन अब वो Instagram के through आते आते Dubai में आते आते we have Dubai did and Dubai mall mein aapko mil jayega this viral Japanese sandwich. Kaun kaun se flavors hain, kya kya hai, kaun si cream, kiski baat kar rahi hu. Triangle socho, samosa ki shape socho, a bigger samosa in a sandwich form. Bata di tab tak what is it about. Till then you keep listening to Big 106.2.

अजनबी से तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे खाने से बहुत प्यार है। बिग 106.2 इट इज, मैं हूँ अवनी एंड दिस इज द बिग रेकमेंड्स, जहाँ पे मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको आज की वायरल जापानीज सैंडविच, जिसको खाने के लिए आपको जापान नहीं जाना पड़ेगा। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द सैंडविच जो कि समोसे की फॉर्म में है, खुला हुआ सैंडविच, अ बिगर वन, क्रिस्पियर वन, लेकिन उसमें क्रीम है, दैट इज नॉट द सेवरी वन, स्पाइसी वाला सैंडविच नहीं है। और ये खुल चुका है अब दुबई मॉल में, आपको मिल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, नाम है इसका H3। अब ऑफकोर्स दुबई में खुला है, फर्स्ट फ्लेवर इज दुबई चॉकलेट, ऑफकोर्स द क्रिस्पीनेस इज अमेजिंग, सेकेंड जो फ्लेवर है उसका दैट इज बनाना ब्रूले, एंड द बेस्ट वन, द ओजी वन, द बेस्ट सेलर इज क्रेम ब्रूले। ये टिकटॉक इंस्टाग्राम पर रील इतनी वायरल हो चुकी थी, आई वाज लाइक यही यार, आई वाज ड्रूलिंग ओवर इट कि मुझे तो एक बार टेस्ट करना ही है, एंड दैट इज हाउ दुबई ओपन्ड इट, एंड दुबई मॉल में आपको ये मिल जाएगा। लेट मी नो अगर आप इन तीनों में से कोई भी टेस्ट करते हो आपको कैसा लगता है। फॉर मी ऑफ कोर्स इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस, मैं पूरा खा भी नहीं पाऊंगी यार, 30 दिरहम्स का एक आता है। विच वन डिड यू चूज, कौन सा खाया, पसंद आया या नहीं आया, डू लेट मी नो, 0543091062। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड लॉन्ग वीकेंड जो है ऑफिशियली खत्म होने वाला है। इतनी हमने खाने की बातें कर ली, इतना खाना रिकमेंड कर दिया मैंने, लेकिन देयर आर पीपल जिनकी रूटीन होती है कि खाने के बाद ना तो वो पानी पीते हैं, खाने के बाद वो सो जाते हैं, खाने के बाद मम्मा को फोन करके बताते हैं कि मैंने खाया क्या है। लेकिन दिस टाइम रिकमेंड करने वाली हूँ मैं, खाना खा चुके हैं और रिकमेंड कर चुकी हूँ खाना, लेकिन लॉन्ग वीकेंड खत्म हो रहा है यार, पर अच्छा तो नहीं लगता है ना किसी को। सो दिस इज वन थिंग आई वुड रिकमेंड इफ यू आर इन दुबई और यूएई, ये जरूर करना, मिस मत करना।
3: ये नशा बहका बहका सा ये समा,
2: ये समा एंजॉय करने के लिए ऑल यू गॉट टू डू इज एंजॉय यूएईज बेस्ट सनसेट्स। कहां पर होने वाले हैं, क्या रिकमेंड करने वाली हूँ, फदार की बट लॉक टू बिग 106.2।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: हाई स्पीड ऑटोबान, मजेस्टिक बवेरियन कैसल्स, द अल्टीमेट यूरोपियन एडवेंचर इज कॉलिंग योर नेम। द बिग चेक इन इज बैक एंड इट्स बिगर देन एवर। सो पैक योर बैग्स बिकॉज़ बिग 106.2 इज टेकिंग यू टू जर्मनी। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज। This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany, only on Big 106.2.
0: We have got your weekend sorted. The Big Recommends, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी एंड दिस इज द बिग रिकमेंड्स, जहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाली हूँ ये लॉन्ग वीकेंड को खत्म करने के लिए काफी अच्छा जुगाड़, बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन, वॉचिंग सनसेट्स आराम से, यू नो, टेक अ मोमेंट के 3 दिन आपने अगर ऐश करी है, घूमे फिरे हो, तो कल से वैसे ही ऑफिशियल एडल्टिंग लाइफ शुरू होने वाली है। सनसेट के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन मैं देने वाली हूँ, पाम जो मेरा, आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। अगर आप वहाँ जाते हो बीच, सनसेट काइट बीच पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड देन देयर इज, अगर आपको डेजर्ट में जाकर सनसेट एक्सपीरियंस करना है, दैट्स अल कुदरा लेक्स में मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, बट फिर भी इन तीनों में से मुझे बेस्ट जो है ना पाम जो मेरा वाला सनसेट लगा है। अगर आपके पास कोई बेटर रिकमेंडेशन है UAE दुबई में सनसेट की, डू लेट मी नो, DM करके मुझे 106.2 FM के इंस्टा हैंडल पर, एंड कर लो यार सनसेट, स्लो लाइफ थोड़ी सी एंजॉय कर लो, बिकॉज कल तो फिर भाई। यही चलेगा दिमाग में, एडल्टिंग इट इज, कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।